बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम। भगवती सिमरक गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनो निध्या बताए।

सदिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत किह अचल मूरत अनपहो प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साह साहाण गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जिह अमृत बचन बाणी साधु जान जप है कार विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीत है जम लोक पतित जे प्राणी हर जान सेव गुर ज्ञान रती रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन वंश है जाकी शरण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण प्रभ की चरण मन माहित आन

जाकै हृदय वसै भगवान, कहो नानक सेई जन पूरे, जिना प्राप्त साधु तूरे। सतगुर सच्चा नाव गुरमुख जानिए, साध संगत सच थाओ सबद वखाणिए। दरगह सच नियाओ जल दुध छाणिए, गुर सरणी असराओ सेव कमाणिए। सबद सुरत सुन गाओ अंदर आणिए, तिस कुरबान जाओ मान निमाणिए। सबद सुरत सुन गाओ अंदर आणिए,

पिया अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम्मदी नूर अर सहकुर सह।

मोगे पत तो धारी तेरे पद पादक चरण लेवला गिरा है। दया कै दयाल मोहे पत ते उदारी है। जेता समुंद सागर नीर परिया, जेता समुंद सागर नीर परिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो दया करो, किस मेहर उपावो।

0: शिरशाह पातशाह नेहचल चौर छत
1: औड़ी वड्डी वड्डा भारत तेरा मर्तबा रंग परंग नेक

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाण जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरवाण हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तोटी जम की फासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन वल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसन तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आरा अवर ना कोए तू कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती।

बरनत पिन पिन तुहते तीन तुमरा लखा न जाय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा आंडज जीरज सेतज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोस्त जीते उठवा त्युत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शह स्व सक न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उवार।

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ।

राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, पांच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे।

कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ह कतहु नाही। एक बात सुनता की ओट, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निरभउ, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगास, पाया पद निरबाणी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परियारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु आनंद

तनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खप बहुत बेकार। जैतन बाणी बिसर जाए,

जैन कान कीते अखी नाक, जैन जेहवा दिती बोले तात, जैन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए, जेता मोह परीत स्वाद, सब्बा कालख दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगह बैसन नाही जाए, कारण मिला आखन तेरा नाओ, जेत लग तरना होर नहीं था।

कर्म मिला आखण तेरा नाउ, जेत लग तारना होर नहीं थाउ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्बदा तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिखाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हर दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा करवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे ते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा।

शतर न पतर न चौर न चावर बैती जात रिदे ना बिचारो राथ न असव न गज सिंह आसन छिन्मय त्यागत नांग सिधारो सूर न बीर न मीर न खानम संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कतर साजन साख उल्टत जात बिरह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत।

ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ता कै दर्श समावत तिसह त्या ज्ञान को जाचै मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इष्णान दान पापन सुच किरया चरण कमल।

0: कोट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंदियो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बो पाटी बिछरे अनेक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो प्रमते सुखम दे बंदे बो चटुआ बिन हर पयन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोमपाका अनेक पात थाटे कर थटुआ।
3: सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज अम्यो उठो शज सुर नर गनमन बोयो अगाजे मारियो कंटक काल गरज तावत दियो बरज पंचपूत एक करे राख दे समझे

निर्मल नाम सुधा परिपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह आत बाड, सुपर सदा सब बिदरत नागर, संत मरा

सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा मेरे मां

शरणागत पुरख प्रतिपल घा दर्शन संत देहो सुख पावा प्रभ लोच पूर जान तुम घा।

0: परमेश्वर गोरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा हे सीस निवाए क्या थी है जार दे कुस दे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजिस बगल समादं मुख झूठ भूखं सारं त्रैपाल तिहाल बेचारं गल माला तिलक लिलाटंग दो धोती बस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं करमं साफ उकट नीचो करमं